0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना, आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। शिराजी साहब, जापान में कल बुजुर्गों की ताजीम का दिन है।
1: हाँ जी, मैंने सुना है यहाँ सन 2003 से हर साल सितंबर के तीसरे पीर को बुजुर्गों का दिन मनाया जाता है, उन्हें तोहफे भी दिए जाते हैं।
0: ये है योमे ताजीमे बुजुर्गान, जिसे जापानी जुबान में केरोनोही कहा जाता है। सामिन, दरअसल जापान में बुजुर्गों को ताजीम देने के लिए कोई 60 साल पहले इस दिन को कौमी तातील करार दिया गया था।
1: ये तो पता चल गया, लेकिन आप लोग ये बताएं ना कि आप दोनों घर में इसे कैसे मनाती हैं?
2: नहीं, मेरी अम्मी ने मना किया है घर की बात बाहर नहीं करनी।
1: तो अम्मी के लिए कोई तोहफा ले जाएं?
2: कहा ना, बाहर की बात अंदर की बात बाहर नहीं करनी।
0: अच्छा, ज्यादातर जापान में ज्यादातर बुजुर्गों को उनके कमाऊ बेटे बेटियां कोई ना कोई तोहफा देते हैं।
2: जी बिल्कुल, और जापान में उमूमी रवाज ये है कि बच्चे माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं।
0: और उस दिन से पहले कई स्टोर केरोनोही कॉर्नर मखसूस कर देते हैं, जहाँ बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए चीजें, मसाज चेयर और घरेलू बरकी आलात वगैरह होते हैं।
1: अच्छा, तो अब मुझे आप दोनों के लिए ऐसा कोई तोहफा देना शायद पड़ेगा।
0: ढेर सारे पैसे जमा करें। वैसे एक नया और आसान रवाज भी सुन ले। मेरी एक जापानी दोस्त ने बताया कि आजकल कई बच्चे एआई के साथ बुजुर्गों के दिन के ग्रीटिंग कार्ड्स बना लेते हैं।
2: अच्छा, साले नौ या ईद मुबारक जैसा, लेकिन इस कार्ड पर किसी तस्वीर, कैसी तस्वीर बनाई जाती होगी? ईद कार्डों पर तो हिलाले ईद वगैरह होता है।
0: अरे, केरोनोही कार्ड्स पर खिजा के फूल, कोहे फूजी जैसे डिजाइन होते हैं। कोई एक खास वजह या कोई खास डिजाइन नहीं है, और जिस तरह कोई खास डिजाइन नहीं है, इसी तरह बुजुर्गी की भी कोई वाजे हजबंदी नहीं। कुछ लोग इसे दादा दादी नाना नानी का दिन समझते हैं, और कुछ का ख्याल है कि 60 या 70 साल से कहीं ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।
1: अब ये ना कहिएगा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है।
2: बिल्कुल ऐसा कहेंगे नहीं, समझते नहीं है भाई। भाई, हमारे अमले की रुकन खाने को बिस्मा कहती हैं कि इस साल बुजुर्गों के लिए एहतराम का दिन कुछ खास है, क्योंकि 21 सितंबर को बुजुर्गों की ताजीम के दिन और 23 सितंबर को खिजा के एतदाले शबरोज की तातील है।
0: हाँ, वो दिन जब दिन और रात का वक्त बराबर हो जाता है। वैसे एक बात है कि 22 सितंबर को भी, 21 और 23 के दरमियान 22 सितंबर को भी हुकूमत ने छुट्टी दे दी है। उसकी वजह यह है कि जापान में अगर दो कौमी तातीलात, वीकेंड की नहीं मैं बात कर रही, दो कौमी तातीलात के दरमियान एक खाली दिन आता हो तो उस दिन भी छुट्टी होती है।
1: अच्छा, इसीलिए इस तवील तातील के लिए यहाँ लोग बहुत पुरजोश हैं।
0: हाँ, क्योंकि हफ्ते इतवार को अगर आप काम नहीं करते तो 19 से 23 सितंबर तक 5 दिन की छुट्टी है।
2: अच्छा, बिस्मा बताती हैं कि आजकल जापान में लोग 5 रोजा छुट्टियों के मंसूबों के बारे में बहुत बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ईद की छुट्टियों के बारे में करते हैं।
0: जी जी जी,
1: चलिए जी, अब सामीन के पैगाम देख लेते हैं।
0: अरे, छुट्टियों के जिक्र से इतनी खुशी हो रही थी। जी, सामीन के पैगाम का आपने जिक्र किया, तो पैगाम है सिंध पाकिस्तान से हक नवाज टग्गर साहब का। लिखते हैं, प्रोग्राम दीवान खाना मेरे जैसा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, साथ ही उन्होंने गुलाब के फूलों का और दिल का एमोजी भेजा है।
1: अच्छा, वैसे दो फूल और एक दिल कुछ समझ नहीं आई।
2: क्यों नहीं समझ आई भाई? देखें, एक दिल आपके लिए, दो फूल, एक मेरा, एक वसीमा का।
1: कामयामा साहब,
0: हक नवाज साहब, आइंदा हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब और उनकी मावन का भी फूल जरूर भेजिएगा।
1: हक नवाज टगर साहब, पैगाम का और हमारी महफिल में रौनक लगाने का बेहद शुक्रिया। वाकई बिल्कुल आप जैसे खूबसूरत सामे और वैसा ही आपका प्रोग्राम।
2: उम्मीद है आइंदा मजीद तफसीली ईमेल लिखेंगे और मजीद रौनक लगाएंगे। आप जैसे सब सामईन के लिए पैगाम है कि राब्ते इस्तवार रखें, हमें फूल भेजते रहें, हम उन्हें जमा करके बड़ा سا گلدستہ بنا لیں گے۔
0: واہ، پھولوں کے ذکر سے اسٹوڈیو میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کا ذکر ہو گیا اور اب باری آ گئی موسیقی کی۔
2: جی، آج وسیمہ کے دن، میرا مطلب ہے بزرگوں کے دن کی مناسبت سے گیت سنوائیں گے۔
1: جب آپ ایک دوسرے پر ایسے کمنٹ دیتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔
0: تو میری بزرگ، میں تیری بزرگ۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے گیت منتخب کیا ہے اچی اچی زیرو راک، یعنی 1106۔ اسے جاپانی راک بینڈ وانیما نے پیش کیا ہے۔ یہ بینڈ 2010 میں کوماموتو پریفیکچر کے تین موسیقاروں کینتا، کوشن اور فوجی نے تشکیل دیا تھا۔ اب وہ ٹوکیو میں رہتے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں اپنا پہلا البم کین ناٹ بیہیوڈ جاری کیا تھا۔
2: 2017 میں انہوں نے این ایچ کے نئے سال کے میوزک شو کوہاکو اوتاگاسین میں پہلی بار شرکت کی۔
1: 2018 میں انہوں نے اپنا پہلا بڑا مکمل البم ایوری باڈی جاری کیا۔ 2023 میں انہوں نے اپنے آبائی شہر کوماموتو میں اپنا میوزک فیسٹیول منعقد کیا اور جاپان بھر کا ٹور بھی کیا۔
0: کینتا نے یہ گانا اچی اچی زیرو راک اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، جو ان کے دادا کی تاریخ وفات ہے، یعنی 1106۔ کینتا کہتے ہیں انہوں نے یہ گانا اپنے دادا کو خط کے طور پہ لکھا تھا۔
2: ان کے دادا کوماموتو پریفیکچر کے ساحلی علاقے اماکوسا میں ماہی گیر تھے اور کینتا ان کے بہت قریب تھے۔ اسی تعلق کی وجہ سے ونیما نے میوزک ویڈیو کو اماکوسا میں سمندر کے کنارے فلمایا، جہاں ان کے دادا ماہی گیری کرتے تھے۔
1: بسما کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کہ اگرچہ کینتا نے یہ گانا اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، اس نے مجھے اپنے دادا دادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔
0: بسما کہتی ہیں یہ گانا سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ

0: जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें के मुतलका सफ़े पर क्विज का जवाब तलाश करें और अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म الخط या फिर रोमन हरूफ में लिखकर हमें रवाना कर दें।
1: हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे सामेईन जिन्हें जापानी जबान सीखने में दिलचस्पी है वह जरूर इस तरफ रागिब हों और ये क्विज भी इसी सिलसिले की एक काविश है कि आपकी आगाही ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
2: अब कुछ मुख्तलिफ अंदाज की आगाही हासिल करें क्योंकि अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल हमारा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
0: इस सिलसिले में हम जापान के जबान ज़दे आम मुहावरे पेश कर रहे हैं।
1: आज का मुहावरा है सनशो वा कोतोसुबु देमो पिरिरी तो खाराई।
0: इसका लफ्जी मतलब है कि अगरचे सनशो यानी जापानी मिर्च छोटी सी और दानेदार होती है लेकिन इसमें तेजी भरपूर होती है।
1: पिरिरी लफ्ज जो है एक मुख्तसर तेज जलन भरी कैफियत बयान करता है मिर्चों वाली।
2: इससे मुराद यह है कि अगरचे कोई शख्स कद में छोटा हो लेकिन वो पुरजोश और इंतहाई काबिल हो सकता है इसलिए इसे कम नहीं समझना चाहिए।
0: जापानी मिर्च सनशो का साइज बहुत छोटा लेकिन जायका बहुत तेज होता है।
1: इसकी थोड़ी मैं वजाहत करती चलूं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि ये जो मिर्च है ये नारंगी की नस्ल या नौ समझ लें उससे ताल्लुक रखती है क्योंकि इसका जायका ना तो लाल मिर्च जैसा है ना ही मुकम्मल माल्टी जैसा और इसकी शक्ल जो है वो भी हरी मिर्च जैसी नहीं है, रंग हरी मिर्च जैसा है और शक्ल जो है काली मिर्च जैसी है। तो जापान की एक बड़ी मकबूल डिश है उनागी, उसमें इस्तेमाल होती है ईल मछली। उस ईल मछली पे इस मिर्च को जरूर छिड़का जाता है खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए, मर्चीला वाला जायका। और माफ कीजिए खदीजा, मैंने आपके मुहावरे में ढेर सारी मिर्च डाल दी।
0: कोई बात नहीं, मैं मिर्चों ही का जिक्र करूंगी।
1: सनशो मिर्च का जिक्र करेंगे।
0: जी बिल्कुल, सनशो मिर्च का जिक्र करेंगे जो छोटी होती है साइज में लेकिन जायका तेज होता है और इसी खसूसियत से ये कहावत उन लोगों के लिए बनी जो अपनी छोटी जिसामत या सादा जाहरी शक्लो सूरत के बावजूद तेज जहानत, मजबूत किरदार और गैर मामूली सलाहियत रखते हैं।
1: यानी कि जाहिर पे नहीं जाना, अंदर कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, किताब को उसके सरवर्क से मत परखें, है ना। वैसे ये था आजकल का मुहावरा, सॉरी आजकल का नहीं, आज का मुहावरा, इस इतवार का मुहावरा। अब मैं थोड़ी वजाहत करती चलूं खलील साहब, खदीजा साहब, हमने सामिन से कहा कि क्विज है, आपने उसका जवाब भिजवाना है लेकिन किस तरीके से भिजवाना है ये जरा वजाहत हम करते चलें और हम सामिन से दरखास्त करेंगे कि हमसे राबते का तरीका नोट फरमा लीजिए।
0: जी जरूर शिराजी साहब।
2: अपने वेब ब्राउजर्स में आपने लिखना है nhk.jp/urdu। टाइप करने के बाद शोज ऑन डिमांड में आप जाएं, फिर दीवान खाना के पेज पर मेजबानों की थंबनेल वाली तस्वीर के बाएं जानिब पैगामात यहां भेजे पर क्लिक करें।
1: यहां सफा होगा हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, वहां तस्वीर के नीचे हदायात पढ़कर फॉर्म की तरफ बढ़े के उनवान पर क्लिक करना है तो पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुलेगा।
0: उस पर दर्ज हिदायत को पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करने से हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले।
2: ऐसे में मंदरजा बाला से मुत्तफिक मुंतखब करके बाएं जानब वाले तीर के निशान पर क्लिक करने से खुलने वाले फॉर्म में आपको अपना निक नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पैगाम लिखना है। ये मालूमात पूर करके पैगाम लिखने से सवाल सामने आएगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफी है।
1: अगर सिर्फ तहरीरी पैगाम है तो नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करना है और तीर के निशान पर क्लिक करना है तो आपका पैगाम तरसील हो जाएगा।
0: हम आप सबकी जानिब से ढेरों पैगामात के मुंतजर हैं लेकिन अगर खत लिखकर उसकी तस्वीर भेजनी है या कोई तस्वीर या कोई वीडियो शेयर करनी हो तो हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करके आगे बने तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर अपनी फाइल का उनवान यानी टाइटल लिखकर बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें।
2: इस क्लिक पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से सक्सेस योर फाइल हैज बीन सबमिटेड का मैसेज आने पर नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक कर दें।
0: जी बिल्कुल, बस इस क्लिक के बाद आप फाइल, आपका पैगाम, आपका खत फौरन हम तक पहुंच जाएगा। ہم اسے ضرور پڑھیں گے اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں بھی ضرور شامل کریں گے۔
2: اس پیج پر آنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں این ایچ کے کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
1: یاد رکھیں اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ نہیں۔ اگر رومن لکھیں گے تو صفحہ بالکل نہیں ملے گا، اور اگر اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی آئیے گا، ضرور آئیے گا، باری باری آئیے گا، بار بار آئیے گا۔ اور اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ ہم اجازت لینے کا رخ کریں،
2: تو
1: اور جانے سے پہلے بتاتے چلیں
2: کہ آپ ہمیں nhk.jp/urdu کے ذریعے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔
0: ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو، خلیل شیرازی صاحب کو، خدیجہ شاہ کو، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 सितंबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। एक विशाल और शक्तिशाली तूफान जापान के ईजू द्वीप समूह के बहुत करीब पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने टोक्यो के ईजू द्वीप समूह में स्थित ओशिमा नगर के लिए स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अधिकारी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आग्रह कर रहे हैं। एजेंसी के आपदा पैमाने पर स्तर 5 की आपात चेतावनी उच्चतम है, जो इस बात की प्रबल आशंका दर्शाती है कि कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में भूस्खलन हो चुके हैं। एजेंसी के अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यदि निर्दिष्ट आश्रय स्थलों तक पहुंचना जोखिम भरा है तो वे पहाड़ियों और नदियों से यथासंभव दूर रहें या इमारतों की ऊंची मंजिलों पर चले जाएं। कांतो क्षेत्र में पहले ही मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के साकुरा शहर में एक मकान के पीछे की पहाड़ी लगभग 10 मीटर तक ढह गई, जिससे मकान की खिड़कियां टूट गईं। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौसम एजेंसी का कहना है कि सोमवार दोपहर तक डुजियन नामक तूफान जापान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा था। कांतो कोशिन, तोकाई और तोहोकू क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ भीषण वर्षा होने की आशंका है, जिसमें कुछ स्थान पर 80 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने भूस्खलन और तेज आंधियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। वो लोगों को निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान और ऊंची लहरों से सावधान रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बुजुर्ग कामकाजी आबादी का आकार भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। जापान में सोमवार को मनाए जाने वाले वृद्ध सम्मान दिवस से पहले गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। मंत्रालय का अनुमान है कि 15 सितंबर तक जापान में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 3,62,40,000 पहुंच गई थी। ये संख्या 2025 की तुलना में लगभग 20,000 अधिक है। बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी की रिकॉर्ड 29.6% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अंक अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमानों के आधार पर 4 करोड़ से अधिक आबादी वाले 39 देशों में जापान में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक रहा। मंत्रालय के एक अन्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2025 में जापान की वृद्ध कामकाजी आबादी रिकॉर्ड 94.3 लाख थी, जो 2024 की तुलना में 1,30,000 अधिक है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में रोजगार दर 26% रही, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% अंक अधिक है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर कोरियाई एजेंटों द्वारा दशकों पहले अगवा किए गए जापानी नागरिकों के दो रिश्तेदार सोमवार को जापान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वे शेष सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयासों के लिए सरकारी अधिकारियों और सांसदों से सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इन परिजनों में से एक योकोता थाकुया हैं, जो अपहृतों के परिवारों के एक समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब हुआ था जब वे जूनियर हाईस्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दूसरे रिश्तेदार हैं ईजुका कोइचिरो, जिनकी माँ थागुची याएको का अपहरण तब हुआ था जब वे 1 साल के थे। दोनों स्थानीय समयानुसार बृहस्पतिवार तक अमेरिका में ही रहेंगे। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्र होंगे। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान ने मौजूदा संघर्ष समाप्त करने से जुड़ी वार्ता बहाल करने के बारे में अमेरिका के समक्ष 7 शर्तें रख दी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। यह परिषद ईरान की कूटनीति व राष्ट्रीय रक्षा मामलों की प्रभारी है। सभी 7 शर्तों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रेजाई ने लिखा कि अगर अमेरिका खुद की पैदा की गई दुविधा से बाहर निकलकर आगे और उलझने से बचना चाहता है, तो उसके पास ईरान के अधिकार और शर्तें स्वीकारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस घोषणा से पहले रेजाई ने अल जजीरा को दिए साक्षात्कार में कहा कि कतर के माध्यम से अमेरिका तक ये शर्तें पहुंचा दी गई हैं और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने अमरीकी समुद्री नाकाबंदी समाप्त करने और फ्रीज परिसंपत्तियां मुक्त करने जैसी ईरानी मांगें गिनाई। उन्होंने निर्णायक युद्ध के प्रति ईरान की तत्परता भी व्यक्त की। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ वार्ता बहाल हो पाती है या नहीं। एक प्रतिबंध निगरानी दल के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस में काम करने वाले उत्तर कोरियाई श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दल का कहना है कि इनमें से कुछ श्रमिक सैन्य उपयोग के ड्रोन विमान बनाने के काम में लगे हैं। गौरतलब है कि ये दल प्रतिबंधों से बचने के उत्तर कोरियाई कदमों पर नजर रखता है। बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल ने पिछले बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस दल का गठन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित 11 देशों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षांत तक अनुमानित 15 से 30 हजार उत्तर कोरियाई लोग रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि इन श्रमिकों में रूस के तातारस्तान गणराज्य स्थित अलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनात एक टुकड़ी भी शामिल है, जहां वो रूसी सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले सैन्य ड्रोन विमानों के उत्पादन में लगी है। इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई श्रमिकों को छात्रों के रूप में छिपाने के लिए रूस ने वर्ष 2020 में एक कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद से ये संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि इस संशोधन से छात्र वीजा धारकों को काम करने की अनुमति दी गई। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूँ सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस।
1: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校 दे बोरांटिया ओ शिमास्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतात्तारी
0: है क्रिया,
3: उताऊ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमाश्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप, और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।

0: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो,
3: ओइसो
1: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
3: ओइसो।
1: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
3: ओइशी।
4: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: ओइसो।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
1: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयां और नमकीन भी शामिल है।
4: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
1: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
4: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
1: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
4: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए
4: सायोनारा।
8: वर्ल्ड 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 सितंबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। एक विशाल और शक्तिशाली तूफान जापान के ईजू द्वीप समूह के बहुत करीब पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने टोक्यो के ईजू द्वीप समूह में स्थित ओशिमा नगर के लिए स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अधिकारी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आग्रह कर रहे हैं। एजेंसी के आपदा पैमाने पर स्तर 5 की आपात चेतावनी उच्चतम है, जो इस बात की प्रबल आशंका दर्शाती है कि कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में भूस्खलन हो चुके हैं। एजेंसी के अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यदि निर्दिष्ट आश्रय स्थलों तक पहुंचना जोखिम भरा है तो वे पहाड़ियों और नदियों से यथासंभव दूर रहें या इमारतों की ऊंची मंजिलों पर चले जाएं। कांतो क्षेत्र में पहले ही मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के साकुरा शहर में एक मकान के पीछे की पहाड़ी लगभग 10 मीटर तक ढह गई, जिससे मकान की खिड़कियां टूट गईं। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौसम एजेंसी का कहना है कि सोमवार दोपहर तक डुजियन नामक तूफान जापान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा था। कांतो कोशिन, तोकाई और तोहोकू क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ भीषण वर्षा होने की आशंका है, जिसमें कुछ स्थान पर 80 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने भूस्खलन और तेज आंधियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। वो लोगों को निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान और ऊंची लहरों से सावधान रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बुजुर्ग कामकाजी आबादी का आकार भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। जापान में सोमवार को मनाए जाने वाले वृद्ध सम्मान दिवस से पहले गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। मंत्रालय का अनुमान है कि 15 सितंबर तक जापान में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 3,62,40,000 पहुंच गई थी। ये संख्या 2025 की तुलना में लगभग 20,000 अधिक है। बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी की रिकॉर्ड 29.6% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अंक अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमानों के आधार पर 4 करोड़ से अधिक आबादी वाले 39 देशों में जापान में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक रहा। मंत्रालय के एक अन्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2025 में जापान की वृद्ध कामकाजी आबादी रिकॉर्ड 94.3 लाख थी, जो 2024 की तुलना में 1,30,000 अधिक है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में रोजगार दर 26% रही, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% अंक अधिक है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर कोरियाई एजेंटों द्वारा दशकों पहले अगवा किए गए जापानी नागरिकों के दो रिश्तेदार सोमवार को जापान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वे शेष सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयासों के लिए सरकारी अधिकारियों और सांसदों से सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इन परिजनों में से एक योकोता थाकुया हैं, जो अपहृतों के परिवारों के एक समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब हुआ था जब वे जूनियर हाई स्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दूसरे रिश्तेदार हैं ईजुका कोइचिरो, जिनकी मां थागुची याएको का अपहरण तब हुआ था जब वे 1 साल के थे। दोनों स्थानीय समयानुसार बृहस्पतिवार तक अमेरिका में ही रहेंगे। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्र होंगे। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान ने मौजूदा संघर्ष समाप्त करने से जुड़ी वार्ता बहाल करने के बारे में अमेरिका के समक्ष 7 शर्तें रख दी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। यह परिषद ईरान की कूटनीति व राष्ट्रीय रक्षा मामलों की प्रभारी है। सभी 7 शर्तों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रेजाई ने लिखा कि अगर अमेरिका खुद की पैदा की गई दुविधा से बाहर निकलकर आगे और उलझने से बचना चाहता है, तो उसके पास ईरान के अधिकार और शर्तें स्वीकारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस घोषणा से पहले रेजाई ने अल जजीरा को दिए साक्षात्कार में कहा कि कतर के माध्यम से अमेरिका तक ये शर्तें पहुंचा दी गई हैं और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी समाप्त करने और फ्रीज परिसंपत्तियां मुक्त करने जैसी ईरानी मांगें गिनाई। उन्होंने निर्णायक युद्ध के प्रति ईरान की तत्परता भी व्यक्त की। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ वार्ता बहाल हो पाती है या नहीं। एक प्रतिबंध निगरानी दल के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस में काम करने वाले उत्तर कोरियाई श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दल का कहना है कि इनमें से कुछ श्रमिक सैन्य उपयोग के ड्रोन विमान बनाने के काम में लगे हैं। गौरतलब है कि ये दल प्रतिबंधों से बचने के उत्तर कोरियाई कदमों पर नजर रखता है। बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल ने पिछले बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस दल का गठन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित 11 देशों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षांत तक अनुमानित 15 से 30 हजार उत्तर कोरियाई लोग रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि इन श्रमिकों में रूस के तातारस्तान गणराज्य स्थित अलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनात एक टुकड़ी भी शामिल है, जहां वो रूसी सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले सैन्य ड्रोन विमानों के उत्पादन में लगी है। इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई श्रमिकों को छात्रों के रूप में छिपाने के लिए रूस ने वर्ष 2020 में एक कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद से ये संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि इस संशोधन से छात्र वीजा धारकों को काम करने की अनुमति दी गई। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो।
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校でボランティアをしました।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सानी आईताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: 一緒に
0: का अर्थ है साथ में,
3: 歌ったり
0: है क्रिया,
3: 歌う
0: यानी गाना का,
3: たり
0: रूप, और
3: 踊ったり
0: है क्रिया,
3: 踊る
0: यानी नाचना का,
3: たり
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: しました,
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: तारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा, उतातारी ओदोतारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है, इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
3: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
3: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
3: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
3: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिताई देसु
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया
3: सुरु
1: यानी करना का तारी रूप है
3: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
3: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
3: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।

0: 美味しそう。
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。
3: 美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
1: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
6: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्टकेक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
1: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
6: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
1: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
6: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। कई दहाइयां कबल शुमाली कोरियाई एजेंटों के हाथों अगवा किए जाने वाले जापानी शहरियों में से दो के रिश्तेदार पीर के रोज जापान से अमरीका गए हैं। उनका इरादा है कि तमाम मगवियों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की कोशिशों के सिलसिले में अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और कानून साजों से तआवुन तलब करें। इनमें से एक रिश्तेदार योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगोमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल की पहले साल की तालबा थी। दूसरे जापानी का नाम इजुका कोइचिरो है। अपनी वालदा तागुची याइको के अगवा के वक्त वो सिर्फ एक साल के थे। मजकूरा दोनों अफराद का मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात तक अमरीका में क्याम का मंसूबा है। रवां हफ्ते आलमी रहनुमा अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में जमा होंगे। एक आला ईरानी अहदेदार का कहना है कि तेहरान ने जारी तनाज़े के खात्मे के मुजाकरात की बहाली के लिए अमरीका को 7 शराइत से आगाह किया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया। ये काउंसिल ईरान की सिफारतकारी और कौमी दिफा की निगरानी करती है। तमाम 7 शराइत की मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर वाशिंगटन अपने लिए पैदा की गई मुसीबत से निकलना चाहता है और मजीद उलझने से बचना चाहता है तो उसके पास ईरान के हुकूक और शराइत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस पोस्ट से पहले रजाई ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सालिस मुल्क कतर के जरिए अमरीका को शराइत से आगाह किया गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है। उन्होंने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मुंजमित असासों की बहाली समेत उन शराइत को दर्ज किया जिनका ईरान मुतालबा कर रहा है। उन्होंने फैसला कुन जंग के लिए ईरान की तैयारी का भी इजहार किया। ये देखना बाकी है कि क्या ये शराइत मुजाकरात की बहाली का बाइस बनती हैं। पाबंदियों से बचने के शुमाली कोरिया के तरीकों पर नज़र रखने वाली एक टीम का कहना है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस में काम करने वाले शुमाली कोरियाई मजदूरों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। टीम का कहना है कि इनमें से कुछ कारकुन फौजी इस्तेमाल के लिए ड्रोन बनाते हैं। कसीरुज्जेहती पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम ने गुज़िश्ता बुध को एक रिपोर्ट जारी की। ये टीम जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया समेत 11 ममालिक ने कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर तक 15,000 से 30,000 शुमाली कोरियाई बाशिंदे रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि कारकुनों में रूस के जमहूरिया तातारिस्तान में वाक़ अलाबुगा खसूसी इकतसादी जोन में तैनात एक ग्रुप भी शामिल है जहां वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूसी मुसल्लह अफवाज को फराहम किए जाने वाले फौजी ड्रोन्स की तैयारी में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की जानिब से 2020 में तालिबान वीजा रखने वालों को काम करने की इजाजत देने के लिए एक कानून में तरमीम के बाद इस तादाद में इजाफा हुआ जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया के कारकुनों को तालिब इल्मों के तौर पर भेजने के लिए एक स्कीम बनाई गई। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक बड़ा और शदीद समंदरी तूफान जापान के इज़ू जज़ायर के बहुत करीब है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने टोक्यो के इज़ू जज़ायर में ओशिमा कस्बे के लिए 5वें दर्जे का हंगामी इंतबाह जारी किया है। एजेंसी एहलकार लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। और हुकूमत जापान के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 सितंबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। एक विशाल और शक्तिशाली तूफान जापान के ईजू द्वीप समूह के बहुत करीब पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने टोक्यो के ईजू द्वीप समूह में स्थित ओशिमा नगर के लिए स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अधिकारी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आग्रह कर रहे हैं। एजेंसी के आपदा पैमाने पर स्तर 5 की आपात चेतावनी उच्चतम है, जो इस बात की प्रबल आशंका दर्शाती है कि कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में भूस्खलन हो चुके हैं। एजेंसी के अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यदि निर्दिष्ट आश्रय स्थलों तक पहुंचना जोखिम भरा है तो वे पहाड़ियों और नदियों से यथासंभव दूर रहें या इमारतों की ऊंची मंजिलों पर चले जाएं। कांतो क्षेत्र में पहले ही मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के साकुरा शहर में एक मकान के पीछे की पहाड़ी लगभग 10 मीटर तक ढह गई, जिससे मकान की खिड़कियां टूट गईं। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौसम एजेंसी का कहना है कि सोमवार दोपहर तक डुजियन नामक तूफान जापान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा था। कांतो कोशिन, तोकाई और तोहोकू क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ भीषण वर्षा होने की आशंका है, जिसमें कुछ स्थान पर 80 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने भूस्खलन और तेज आंधियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। वो लोगों को निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान और ऊंची लहरों से सावधान रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बुजुर्ग कामकाजी आबादी का आकार भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। जापान में सोमवार को मनाए जाने वाले वृद्ध सम्मान दिवस से पहले गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। मंत्रालय का अनुमान है कि 15 सितंबर तक जापान में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 3,62,40,000 पहुंच गई थी। ये संख्या 2025 की तुलना में लगभग 20,000 अधिक है। बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी की रिकॉर्ड 29.6% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अंक अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमानों के आधार पर 4 करोड़ से अधिक आबादी वाले 39 देशों में जापान में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक रहा। मंत्रालय के एक अन्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2025 में जापान की वृद्ध कामकाजी आबादी रिकॉर्ड 94.3 लाख थी, जो 2024 की तुलना में 1,30,000 अधिक है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में रोजगार दर 26% रही, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% अंक अधिक है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर कोरियाई एजेंटों द्वारा दशकों पहले अगवा किए गए जापानी नागरिकों के दो रिश्तेदार सोमवार को जापान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वे शेष सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयासों के लिए सरकारी अधिकारियों और सांसदों से सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इन परिजनों में से एक योकोता थाकुया हैं, जो अपहृतों के परिवारों के एक समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब हुआ था जब वे जूनियर हाईस्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दूसरे रिश्तेदार हैं ईजुका कोइचिरो, जिनकी माँ थागुची याएको का अपहरण तब हुआ था जब वे 1 साल के थे। दोनों स्थानीय समयानुसार बृहस्पतिवार तक अमेरिका में ही रहेंगे। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्र होंगे। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान ने मौजूदा संघर्ष समाप्त करने से जुड़ी वार्ता बहाल करने के बारे में अमेरिका के समक्ष 7 शर्तें रख दी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। यह परिषद ईरान की कूटनीति व राष्ट्रीय रक्षा मामलों की प्रभारी है। सभी 7 शर्तों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रेजाई ने लिखा कि अगर अमेरिका खुद की पैदा की गई दुविधा से बाहर निकलकर आगे और उलझने से बचना चाहता है, तो उसके पास ईरान के अधिकार और शर्तें स्वीकारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस घोषणा से पहले रेजाई ने अल जजीरा को दिए साक्षात्कार में कहा कि कतर के माध्यम से अमेरिका तक ये शर्तें पहुंचा दी गई हैं और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी समाप्त करने और फ्रीज परिसंपत्तियां मुक्त करने जैसी ईरानी मांगें गिनाई। उन्होंने निर्णायक युद्ध के प्रति ईरान की तत्परता भी व्यक्त की। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ वार्ता बहाल हो पाती है या नहीं। एक प्रतिबंध निगरानी दल के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस में काम करने वाले उत्तर कोरियाई श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दल का कहना है कि इनमें से कुछ श्रमिक सैन्य उपयोग के ड्रोन विमान बनाने के काम में लगे हैं। गौरतलब है कि ये दल प्रतिबंधों से बचने के उत्तर कोरियाई कदमों पर नजर रखता है। बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल ने पिछले बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस दल का गठन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित 11 देशों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षांत तक अनुमानित 15 से 30 हजार उत्तर कोरियाई लोग रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि इन श्रमिकों में रूस के तातारस्तान गणराज्य स्थित अलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनात एक टुकड़ी भी शामिल है, जहां वो रूसी सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले सैन्य ड्रोन विमानों के उत्पादन में लगी है। इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई श्रमिकों को छात्रों के रूप में छिपाने के लिए रूस ने वर्ष 2020 में एक कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद से ये संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि इस संशोधन से छात्र वीजा धारकों को काम करने की अनुमति दी गई। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: शोगाक्को दे बोरांटिया ओ शिमाश्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयंसेवी थे।
4: इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतत्तारी
0: है क्रिया,
3: उताउ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमाश्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
3: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
3: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
3: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
3: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
3: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
3: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
3: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो ओ शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
3: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
3: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
3: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: ओइसो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पाफे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयां और नमकीन भी शामिल है।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं, जैसे जापान के शॉर्ट केक।

0: ऐसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयाँ बहुत आकर्षक लगती हैं।
1: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
2: रेडियो जापान टोक्यो।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। कई दहाइयां कबल शुमाली कोरियाई एजेंटों के हाथों अगवा किए जाने वाले जापानी शहरियों में से दो के रिश्तेदार पीर के रोज जापान से अमरीका गए हैं। उनका इरादा है कि तमाम मगवियों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की कोशिशों के सिलसिले में अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और कानून साजों से तआवुन तलब करें। इनमें से एक रिश्तेदार योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगोमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल की पहले साल की तालबा थीं। दूसरे जापानी का नाम इजुका कोइचिरो है। अपनी वालदा तागुची याइको के अगवा के वक्त वो सिर्फ एक साल के थे। मज़कूरा दोनों अफराद का मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात तक अमरीका में क़याम का मंसूबा है। रवां हफ्ते आलमी रहनुमा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में जमा होंगे। एक आला ईरानी अहदेदार का कहना है कि तेहरान ने जारी तनाज़े के खात्मे के मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका को 7 शराइत से आगाह किया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया। ये काउंसिल ईरान की सिफारतकारी और कौमी दिफा की निगरानी करती है। तमाम 7 शराइत की मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर वाशिंगटन अपने लिए पैदा की गई मुसीबत से निकलना चाहता है और मजीद उलझने से बचना चाहता है तो उसके पास ईरान के हुकूक और शराइत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस पोस्ट से पहले रजाई ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सालिस मुल्क कतर के जरिए अमरीका को शराइत से आगाह किया गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है। उन्होंने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मुंजमित असासों की बहाली समेत उन शराइत को दर्ज किया जिनका ईरान मुतालबा कर रहा है। उन्होंने फैसला कुन जंग के लिए ईरान की तैयारी का भी इजहार किया। ये देखना बाकी है कि क्या ये शराइत मुजाकरात की बहाली का बाइस बनती हैं। पाबंदियों से बचने के शुमाली कोरिया के तरीकों पर नज़र रखने वाली एक टीम का कहना है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस में काम करने वाले शुमाली कोरियाई मजदूरों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। टीम का कहना है कि इनमें से कुछ कारकुन फौजी इस्तेमाल के लिए ड्रोन बनाते हैं। कसीरुज्जेहती पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम ने गुज़िश्ता बुध को एक रिपोर्ट जारी की। ये टीम जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया समेत 11 ममालिक ने कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर तक 15,000 से 30,000 शुमाली कोरियाई बाशिंदे रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि कारकुनों में रूस के जमहूरिया तातारिस्तान में वाक़े अलाबुगा खसूसी इकतसादी जोन में तैनात एक ग्रुप भी शामिल है, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूसी मुसल्लह अफवाज को फराहम किए जाने वाले फौजी ड्रोन्स की तैयारी में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की जानिब से 2020 में तालिबान वीजा रखने वालों को काम करने की इजाज़त देने के लिए एक कानून में तरमीम के बाद इस तादाद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया के कारकुनों को तालिब इल्मों के तौर पर भेजने के लिए एक स्कीम बनाई गई। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक बड़ा और शदीद समंदरी तूफान जापान के इजू जजायर के बहुत करीब है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने टोक्यो के इजू जजायर में ओशिमा कस्बे के लिए 5वें दर्जे का हंगामी इंतबाह जारी किया है। एजेंसी एहलकार लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। और हुकूमत जापान के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।